0: फ्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत की जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90.5 रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashri Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal.

0: शर्मा अवार्ड, लता मंगेशकर अलंकारण अवार्ड विनर एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन मेमोरी ऑफ श्री आर सी जाद. Performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music based YouTuber with 100 and plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhatiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खंडवा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं. मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी. और एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फूली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए.
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं. तो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर. पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है. मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई. स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को. ट्रांसफरेबल जॉब में थे लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ. तो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे, इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया. एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है. तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ. और बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे वो.
0: अच्छा.
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमाल था. तो क्यों कहूँगी कि उनकी आत्मा में संगीत था. बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए.
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है. तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से. भोपाल में काफ़ी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा. लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में मैं कहूँगी कि ये तो एक जीवन ही कम है संगीत के लिए. आज भी सर के कांटेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है. उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है. और क्योंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक
0: है,
1: मेरे पिताजी मेरी आवाज़ सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज़ ठुमरी के लाए. सो मुझे लगाव भी था बहुत. मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे कैसेट्स ला कर दिए थे और सुनती रही मैं. सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गुप्ता जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ
0: और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो बहुत बड़ी विदुषी है. सुनीता जी, अभी आपने एक थोड़ी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा.

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है? मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में। आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज़्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज़्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल होता है,
0: मुश्किल है
1: क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं उनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुप्ता जी का शुरू से ही पसंद, बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात हो गई और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। तो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद।
0: ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा जी शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहाँ पर उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: यही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, अच्छा कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहाँ। फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था, जहाँ पर कि बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत जरूरी है,
0: और वो गुरु शिष्य परंपरा भी जी उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: देवास से, अच्छा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सुनते आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसिपल ऑफ अपूर्वा गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते नए नए सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एक काम चाहिए, कम से कम भाव करना. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना ज़रूरी है, उतना मेरे लिए रियाज ज़रूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना ज़रूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज़ को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम लेना बहुत ज़रूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठ कर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठ कर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, तो मैं ऐसे सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है, ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठ कर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें. और तीसरा मनन चिंतन करने से, कि अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, कहानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना वो भी रियाज है.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट तो मुझे लगा कि इसमें ये है, मेरे फादर को भी लगा, तो मैंने म्यूजिक में ही एम ए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा. मुझे ऐसा लगा कि मुझे करियर इसी में करना है. तो म्यूज़िक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. तो मेरे गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरे गुरु अपूर्वा गोखले जी, अभी तक यशवंत माले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रहे हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी, अभी तक विकास कशालकर जी से सीख रहे हैं. तो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया है, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वहीं हमारी प्रोग्रेस होती है. तो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. में ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट ऐसा पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला, के जो हमारे ट्रस्टी हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए
2: डिग्री कोर्स
1: स्टार्ट करेंगे। तो 2021 से मैं स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BBA MBA PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज।
0: मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है, लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कितनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, तो जो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है और मैंने स्वर बता दिए हैं कि अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा

0: ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही रहता है, लेकिन राग हमें आज पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन राग मीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे। और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो ये बहुत अच्छा लगता था। और इस वजह से सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: अभी अब हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ते होंगे, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
0: डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष ना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस की तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के,
1: अच्छा
0: 2 प्रैक्टिकल के, तो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा ऐसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी अगर शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंग देव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं, और सारी चीज़ें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं।
1: और ऑटोबायोग्राफी से कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफी
0: है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता हमें पता नहीं उनके नाम हम क्या पढ़े, लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है वे हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या पंडित जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी से जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन उनको हम यही बताते हैं से प्रेरणा लेना है
1: जी,
0: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया उस जमाने में जब ज़्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रेस रियाज करके और वो सब अचीव किया है।
1: और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, मोहित काले जी है, उनकी वजह से ये जो
0: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा हमें करना ही चाहिए, तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, तो यूथ बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है, हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सुमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं प्लेबैक के लिए, तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए भी गाएं, वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते
1: हैं, लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है, ये जो है इसके लिए वो ये जो यूथ है वो इससे अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर फिल्मी संगीत की तरह जैसे आपने बराबर करा,
0: तो मेरा यही इंटेंशन है करते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है उनकी टेंडेंसी दूर करना, मैंने इसीलिए 17 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
1: ऑनलाइन
0: होता
1: होते
0: है।
1: थे।
0: मैं सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सीखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो कंडीशन में सिखाती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना है, कोई भी चीज़ हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। तो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो कंडीशन सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पैंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोज बनाए हैं, और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनकी भी बात की।
1: इसके बारे में आपसे जानकारी लेके एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगाडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओल्ड रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें। मैम अभी पढ़ते हैं आपके PhD की ओर। PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बता रहे हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर। तो हमारे यहाँ सुमया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। तो हमारे यहाँ तक उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला। और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया, तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मज़ा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया। और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे, तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है। और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे लिए म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, और ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज़्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज़्यादा रिकवर भी ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स डेली लाइफ, वो भी सुनते। अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोज के थ्रू मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है। तो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्यगीत, कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ, और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ, और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं।
0: वापस से गाना सुनना चाहिए, तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए राग यमन की बात करती हूँ, आजकल स्ट्रेस सभी को है, तो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ। जैसे यमन राग की अगर हम बात करें

0: और एक क्वेश्चन अभी अभी हम एंड पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है टेस्टिंग। तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनकी तरह गाऊँ, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है। मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है आगे से गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाना ही सफिशेंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना है इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी, क्योंकि राग ना जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाती है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, प्रतिभाएं होती हैं जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह नहीं टिकता है। तो मेरा यही एक गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए।
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं,

0: कॉन्सर्ट्स में ज़्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसे तैयारी करनी?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए। कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना। तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाती हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झक ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या मुद्रा पे आ जाती हैं या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार किया। तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसे है, प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो दो घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है। और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर जॉइनिंग अस ऑन आचार्य 98 FM। और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं।
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक, सरक।

भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। काफी दिनों बाद एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो शायद आज के वक्त में बहुत जरूरी है। जैसे कि आप और मैं और बाकी सब लोग भी जान रहे हैं कि हम किस तरीके से कितने ज्यादा AI फ्रेंडली हो चुके हैं, और AI फ्रेंडली में जैसे किसी एक ने कुछ फिल्टर यूज किया तो उसी फिल्टर को फॉलो करके हम खुद अपनी उस तस्वीर को उस समय हम कैसे दिखते उसमें चले जाते हैं। तो ठीक एक ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड की एक कहानी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कितना इजी है AI को यूज करना, लेकिन AI यूज करते करते हम उसमें हमारी क्या क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो बस आपको थोड़ा सावधान करने के लिए, थोड़ा सतर्क करने के लिए लेके आया हूं मैं कहानी जिसका नाम है एक फिल्टर। ये कहानी कोई सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल की नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक नॉर्मल सोची गई समझी गई कहानी है एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है एक वायरल फिल्टर की कहानी। एक फोटो सिर्फ एक AI फिल्टर और 72 घंटों के अंदर एक सीधी सादी औरत की पूरी जिंदगी इंटरनेट पर बिकने लगी। ये कहानी फिक्शन है, लेकिन इसमें दिखाए गए साइबर क्राइम 100% रियलिटी से इंस्पायर्ड है। बारिश की हल्की बूंदें, मरीन ड्राइव पर रेट्रो म्यूजिक, रील शूट करने यंगस्टर्स और हर दूसरे फोन में एक ही ट्रेंड, मेक 80s फोटो। 31 साल की आयशा शेख एक गवर्नमेंट एड स्कूल में मास कम्युनिकेशन पढ़ाती थी। सिंपल, इंटेलिजेंट और फैमिली ओरिएंटेड। सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर नहीं थी, लेकिन ट्रेंड्स देखने और उसे फॉलो करने उसे काफी ज्यादा पसंद थे। स्कूल के स्टाफ रूम में सब टीचर्स अपने 80s AI पोर्ट्रेट्स दिखा रहे थे। देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? हाँ, रेखा देख रहे हो आप? देखो आयशा, मैं बिल्कुल रेखा लग रही हूं ना? जैसे ही कहा, पूजा मैम हंस पड़ी। नैना ने धीरे से कहा, मुझे ये AI ऐप पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत परमिशन मांगते हैं। आयशा मुस्कुराई, अरे यार एक फोटो एडिट तो है और क्या। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। घर आकर आयशा ने प्ले स्टोर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम से एड से एक ऐप डाउनलोड करी।

नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है, बाय कंटिन्यूइंग यू अग्री टू क्लाउड प्रोसेसिंग। बिना पढ़े आयशा ने सारा अलाउ कर दिया। उसकी सेल्फी अपलोड होती है, प्रोग्रेस बार चलता है 10%, 45%, 100% और धड़ाक से स्क्रीन पर एक खूबसूरत 80s पोर्ट्रेट आ जाता है। आयशा खुश हो जाती है उसे देखकर और व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे वो स्टेटस अपलोड करती है। 3 घंटे के अंदर 1800 व्यूज। उसकी छोटी बहन जारा मैसेज करती है, दीदी बिल्कुल 1984 की हीरोइन लग रही हो। आयशा हंस पड़ती है और फोन साइड में रख देती है, लेकिन बैकग्राउंड में ऐप साइलेंटली 4327 फाइल्स अपलोड कर चुका होता है। उस रात डार्क रूम में कोई लैपटॉप पर डैशबोर्ड देख रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, न्यू यूजर सिंक्रनाइज, नेम आयशा एस, फोटो 2981, डॉक्यूमेंट 46, कॉन्टैक्ट 612। एक आदमी सिर्फ इतना बोलता है, नेक्स्ट टारगेट रेडी। आयशा चैन की नींद सो रही होती है, रात है काफी ज्यादा, उसे पता भी नहीं है कि वो जब सो रही है उसके बैकग्राउंड में, उसकी जिंदगी में जो चल रहा है वही बैकग्राउंड में उसके फोन में भी चल रहा है, पर वो इन दोनों चीज से बेफिकर है। उसे पता ही नहीं कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी में क्या लेके आने वाली है। आयशा को यह भी नहीं पता था कि उसके हनीमून के फोटोज, आधार स्कैन, बैंक स्टेटमेंट्स और फैमिली मेमोरीज भी कोई अननोन देख रहा है। 2 दिन बाद रात के 11:07 पर एक अननोन व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। आयशा का दिल एकदम से रुक जाता है। अननोन यूजर फिर से मैसेज करता है, नाइस 80s लुक, ओरिजिनल फोटोज और भी खूबसूरत है। अब सेम दूसरा मैसेज देखकर आयशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि ये अननोन कौन है और इसे मेरी 80s की फोटोज कहां से मिली, और ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ओरिजिनल फोटोज भी इससे ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आपने जान लिया कि फोटोज शेयर हो चुके हैं, फाइल्स अपलोड हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स भी जा चुके हैं। अब स्कैमर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाला है, लेकिन वो साइबर क्राइम को अंजाम कैसे देगा? या फिर आयशा उसके चंगुल से बच जाएगी, या फिर उसके ट्रैप में फंस जाएगी। सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कोई गाने सुनिए, छोटा मोटा चाय पीजिए थोड़ी बहुत, और जो करना है कीजिए, मैं आता हूँ।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। 80s के इस AI फिल्टर ने सबको पागल कर दिया और पागल कर दिया है आयशा को भी। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसके फोन की सारी फाइल्स बैकग्राउंड ऐप में सब क्लाउड पे अपलोड हो चुकी होगी, और क्लाउड में अपलोड होने के बाद किसी एक स्कैमर ने उसे मैसेज भी कर दिया कि भाई आपकी फोटो तो खूबसूरत है लेकिन ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे स्कैम कैसे होता है। घर में सब सो चुके थे, बारिश हो रही थी, आयशा बेड पर बैठी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और जैसे कि आप जानते हैं उसको एक मैसेज आया था अननोन का कि ओरिजिनल फोटोज और भी ज्यादा खूबसूरत है। आयशा को अब लग रहा था कि कोई उसके साथ चीप प्रैंक कर रहा है, उसने रिप्लाई नहीं किया। 5 सेकंड बाद एक और मैसेज आया, इस बार एक ब्लर्ड फोटो थी। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वो एक प्राइवेट सेल्फी थी जो कभी किसी को भेजी ही नहीं होती। फोटो में वो खुद थी, उसके बेडरूम का मिरर था और वही प्राइवेट सेल्फी जो कभी किसी को उसने भेजी ही नहीं थी। उसके हाथ से फोन गिर जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अब वो धीरे धीरे पैनिक होने लगती है, उसे घबराहट महसूस होती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। और इसी सोच में 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो पूरी रात जागी रहती है और रात जागते जागते सुबह हो जाती है। और सुबह 6 बजे उसको एक मेल आता है, मेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो हमारी सुबह 6 बजे ईमेल आता है आयशा को, ईमेल की सब्जेक्ट लाइन होती है वी ओन योर लाइफ, तुम्हारे फोन के कंप्लीट बैकअप हमारे पास है, 48 घंटे में 2,00,000 क्रिप्टो में ट्रांसफर करो नहीं तो तुम्हारी प्राइवेट फोटोज, आधार, बैंक डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स पब्लिक कर देंगे। और नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है, 47 आवर्स 58 मिनट्स 12 सेकंड्स लेफ्ट, 11 सेकंड, 10 सेकंड, 9 सेकंड। और आयशा रो पड़ती है, रोते रोते वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने फोन की गैलरी खोलती है, उसकी सब फोटोज वही थी और वो सोचने लगती है जब फोन में सब है तो इसके पास सारी फोटोज कैसे चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका डेटा कॉपी हुआ तो हुआ कैसे। अब धीरे धीरे उसकी टेंशन बढ़ती जाती है और इसी टेंशन में वो स्कूल के लिए रेडी होती है और रेडी होके वो स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल का कॉल आता है उसे, आयशा जी प्लीज ऑफिस में आइए। ऑफिस में 3 टीचर्स चुप बैठे थे, प्रिंसिपल ने फोन दिखाया, एक वायरल इमेज थी फोन में, आयशा का चेहरा किसी और औरत के बॉडी पर AI से चिपकाया गया था। डीप फेक इतना रियलिस्टिक था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो असली है। आयशा की आंखों से आंसू निकल गए, सर ये फोटो फेक है, आयशा ने रोते हुए कहा। प्रिंसिपल ने तुरंत इमेज डिलीट करवाई लेकिन तब तक वो दूसरे ग्रुप में पहुंच चुकी थी। एक ही दिन में आयशा की पूरी रेपुटेशन खतरे में आ गई थी। समीर घर आया, समीर आयशा का पति है,
आयशा परेशान होकर जब स्कूल से घर आती है तो वो चुपचाप बैठी होती है और समीर घर आता है और आयशा को चुप बैठा देखता है और बोलता है कि सच बताओ आयशा क्या हुआ। आयशा ने पूरा फोन उसके हाथ में दे दिया। 2 मिनट तक समीर सोचता रहा कि आयशा इसे क्यों कर रही है, फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। और ये सुनते ही आयशा जोर से रो पड़ी। कभी कभी एक सेंटेंस पूरी दुनिया का बोझ हल्का कर देता है, लेकिन फिलहाल आयशा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके फोटोज वायरल होने लगे थे, झूठे डीप फेक्स बनने लग गए थे, बहुत सारी चीजें उसके कॉलिग्स को शेयर होने लगी थी। अब धीरे धीरे उसने सोचा कि इस मुसीबत से निपटना बहुत जरूरी है और समीर ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। और क्या, जब आप मुसीबत के समय परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आप बस यही कोशिश करते हैं कि आप जिससे प्यार करते हो या जो आपका साथी है या जो आपका हमसफर है वो बस आपका हाथ थामकर आपके साथ खड़े रहे और बस आपसे इतना कहे कि कुछ नहीं, मैं हूं ना, मिल बांटकर संभाल लेंगे। और समीर ने आयशा को हिम्मत दी और कहा कि हम हार कर चुप नहीं बैठेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अगली सुबह वो मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर रितिका देशमुख उन्हें पेशेंटली सुनती है। सबसे पहले पैसे नहीं देने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को फोन कनेक्ट करती है रितिका और कहती है कि सर एक केस आया है, आपसे उस पर बात करनी है। रितिका और फॉरेंसिक टीम वो केस डिस्कस करते हैं और फॉरेंसिक टीम उस केस को चेक करने में लग जाती है। अब चेक करते करते पता चलता है कि गैलरी सिंक्रोनाइज हुई है आपके फोन की, कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्टेड हो चुके हैं, पीडीएफ इंडेक्स हो चुके हैं और लोकेशन मेटाबेस से कॉपी हो चुका है। रितिका बोलती है कि आयशा जी प्रॉब्लम फोटो नहीं परमिशन थी, फेक ऐप ने क्लाउड के नाम पर आपका डेटा अपलोड कर दिया। मतलब मेरा आधार भी, आयशा ने पूछा। जी, और इसलिए वो आपको साइकोलॉजिकली टारगेट कर रहा है। अब आयशा अपनी प्रॉब्लम की मेन जड़ जान चुकी है तो वो देखती है कि आगे क्या करे। और साथ ही साथ इंस्पेक्टर रितिका उससे कहती है कि आपको पैसे नहीं देने, आपको ट्रस्ट करना है हम पर कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। शाम को ब्लैकमेलर का एक वॉइस नोट आता है, उसकी आवाज रोबोटिक थी। कल 6 बजे तक पैसे नहीं मिले और अगर तुम पुलिस के पास गई तो सोच लेना तुम्हारी छोटी बहन जारा के कॉलेज में फोटोज पहुंच जाएंगी। ये बात सुनते ही आयशा शॉक हो जाती है, जैसे मानो उसका खून जम चुका हो। अब सिर्फ बात आयशा या उसके कलीग तक नहीं, अब ये बात उसकी प्राइवेसी की धीरे धीरे फैमिली और फैमिली से सोशली होने लगी थी। आयशा घबराते हुए तुरंत अपना घर से निकलकर पहुंचती है इंस्पेक्टर रितिका के पास और रितिका

को वो सारी बातें बताती है जो ब्लैक मिलर ने उससे कही होती है। इंस्पेक्टर, रितिका सारी बात सुनकर टेबल पर जोर से हाथ मारती है और कहती है, कल वो सोचेगा शिकार डरेगा, लेकिन कल शिकार नहीं, पुलिस उसका इंतजार करेगी। रितिका अब एकदम तैयार हो चुकी है आयशा को बचाने के लिए, और आयशा जो काफी डरी हुई है, काफी परेशान है, काफी इमोशनली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही है। शायद हम उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते, लेकिन आप ये समझिए दोस्तों कि कैसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से इतना बिगाड़ लिया है कि शायद अब वो जिंदगी कैसे संभले, ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पुलिस अब तैयार हो चुकी है। या तो ब्लैकमेलर जीतेगा या फिर पुलिस। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सुपर हिट गाने।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। हम सुन रहे थे आयशा की कहानी, किस तरीके से वो डीप फेक का शिकार बन चुकी है और इंस्पेक्टर रितिका अब ठान चुकी है कि वो किसी ना किसी तरीके से उस ब्लैकमेलर को पकड़ के रहेगी और उसे सबक सिखाएगी। ब्लैकमेलर जो है उसकी डिमांड है 2 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में, और ब्लैकमेलर धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी चीजें, उसकी फोटोज, उसके आयशा के कॉलिग से लेकर अब धमकी दे चुका है कि वो फैमिली में भी शेयर करेगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा।

काम करने लगा। वहां पे साइबर सेल में रितिका के साथ फॉरेंसिक ऑफिसर कबीर भी थे। कबीर ने बोला, मैम ये जो है ब्लैकमेलर, ये वीपीएन यूज कर रहा है, लेकिन इसने एक मिस्टेक कर दी। ब्लैकमेलर ने क्रिप्टो वॉलेट वेरीफाई करते वक्त अपना रियल इंटरनेट कनेक्शन 8 सेकेंड्स के लिए एक्सपोज कर दिया। और कबीर ने चिल्लाया, आईपी लॉक्ड। लोकेशन फ्लैश हुई डोंगरी, साउथ मुंबई। पुलिस की 2 टीम्स तुरंत वहां के लिए निकल गई, तुरंत। अब देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक छोटी मिस्टेक जो 8 सेकेंड की थी, पुलिस ने उसको किस तरीके से पकड़ लिया। पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती है, उन्हें नजर आता है एक पुरानी बिल्डिंग का 3रा फ्लोर। दरवाजा तोड़ते ही पुलिस अंदर घुसती है। रूम में 6 लैपटॉप, 14 हार्ड ड्राइव्स और हजारों फोल्डर्स, हजारों। और फोल्डर्स पर इतने सारे नाम, महक, रितु, सना, पूजा, आयशा, निकिता, ना जाने कितने सारे नाम। इंस्पेक्टर रितिका ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक विक्टिम नहीं, पूरा साइबर रैकेट है। कॉर्नर में बैठा अमन शॉक में खड़ा हो गया। उसके लैपटॉप पर वही फेक ऐप का एडमिन पैनल खुला हुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, यूजर 18,426। अब पुलिस की टीम ने पूरे साइबर रैकेट को पकड़ लिया था और वो वहीं पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के नाम के फोल्डर्स वहां पर मौजूद थे कि पुलिस परेशान हो गई कि अब तक कितने लोग इन लोगों का शिकार बन चुके होंगे। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि अरमान खुद एक प्रोग्रामर था। उसने वायरल 80s ट्रेंड देखकर फेक AI फिल्टर बनाया, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए, लोग खुद ऐप डाउनलोड करने लगे और परमिशन देने लगे, और परमिशन देते ही उनका डेटा ऑटोमेटिकली क्लाउड पर सेव हो जाता था, अपलोड हो जाता था। फिर AI से उन फोटोज के डीप फेक बनाए जाते थे, उनकी फैमिलीज को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, कलीग तक फोटोज पहुंचाए जाते थे। किसी ने 5 लाख रुपए दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 2 लाख रुपए दिए। और धीरे धीरे ये इतना बड़ा रैकेट बन चुका था कि इन्होंने लगभग करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों से ले लिए थे। ये सारी चीजों को देखते हुए आयशा बहुत ज्यादा शॉक में थी कि मुझसे पहले भी इन लोगों ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। आयशा अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स के सामने

हर ब्यूटीफुल फिल्टर सेफ नहीं होता। आयशा ने इन सारी चीजों को, जिस चीजों से वो सफर कर रही थी, उसे ही उसने फिर अपना हथियार बनाया और स्कूल में सबको दिखाया, ताकि जिस चीज से या जिस प्रॉब्लम से वो गुजर गई, अब कोई और उस प्रॉब्लम से परेशान ना हो, या उस तकलीफ से, या फिर किसी और का शिकार ना बने। और अपना एआई का 80s का फिल्टर दिखाते हुए आयशा कहती है कि हम पासवर्ड स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन परमिशन बिना पढ़ते ही दे देते हैं। साइबर क्राइम हमसे हैकिंग से बचने नहीं कहता, बस वो ये कहता है कि कभी कभी या हमेशा आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो उसकी परमिशंस को जरूर पढ़े कि वो ऐप आपसे क्या मांग रहा है, और बिना पढ़े परमिशन अलाउ मत कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सारे बच्चों ने ये उनकी बात सुनी और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। कुछ दिनों बाद आयशा ने अपना कॉन्फिडेंस तो वापस पा लिया और अरमान को आईटी एक्ट के तहत चार्जेस भी लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या ये फिल्टर्स का बनना बंद होगा? नहीं होगा। क्या साइबर का बनना, साइबर क्राइम का होना कम होगा? नहीं होगा। फिल्टर बनते रहेंगे, क्राइम्स रेट बढ़ते रहेंगे। आज आयशा शिकार थी, कल पूजा होगी, फिर कोई कोई कोई कोई कोई कोई शिकार बनते रहेंगे। लेकिन ये कम कैसे होगा? कम होगा आपकी और हमारी समझदारी से। हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल ना करके एक ऑथेंटिकेट ऐप को इंस्टॉल करें, और ऑथेंटिकेट ऐप को भी जब आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सारी परमिशंस को पढ़िएगा, और कोई भी ऐसी परमिशन को ओके मत करिए जिससे आपकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। हम कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो हाँ, हर चीज के कान होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर सदाबहार कहानियां, और मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, और सबसे बड़ी चीज, सावधान रहिए। ट्रेंड बनाना जरूरी है, फोटोज बनाना जरूरी है, पर फोटोज बनाने के चक्कर में अपनी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए।

0: लगता है कि वो किसी और सर्दी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: शरारती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा,
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।
1: 9 बजे

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी, एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, गर्म पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी। ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की गोलियां।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है, और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई, और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था। 150 मीटर, 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया, और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन, अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट सर की आंखों में आंसू आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ,

ने भी ऑक्सीजन मास्क से हाथ पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना, तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था, कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सिलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी, अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी माँ के बेचे हुए कंगन का नतीजा है, मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ 1 महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा, या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी, या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा। आज़रीन में मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखर पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
1: पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गम हो जाए।
0: जी मैं शराब नहीं छूता।
1: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
2: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगा देते हैं।
3: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी, उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी, लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे, जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था, पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे, कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहां से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे, उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी, सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था, कमेंटेटर्स बोला अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है, 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर, स्पोर्ट्स सर चिल्लाए पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर, लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी, पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी, स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए और इतने जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा, अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है, और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए हिम्मत। दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ। गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके खांधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक्स जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार

थे। आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप, खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मीन्स एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मीन्स उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए। 15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यम्मी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना, यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम, योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है। पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहां पर मैं बात कर रही हूं करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद पाव किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौंफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई। उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा।
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहां पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन का शला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। स्वाद का जायका इस शो के आज के एपिसोड में हमने बनाया पेठे का हलवा, शुरुआत में ही मीठा बना दिया। कुष्मांड के नाम से भी जाने जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है, मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार, खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम, दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट, दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए खुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार 4, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है, और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब
आप एक गाना सुन लीजिए।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग एक चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है। मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था। अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से इस शीर खुरमा का टेस्ट और ज्यादा अच्छा लगता है। यकीन ना आए तो एक बार आप इसे ट्राई तो कीजिए जनाब। और इसके साथ आप सुनिए हमारे आचार्य 90 FM का अगला वाला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लजीज शीर खुरमा की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है उम्मीदों वाली ईद। शीर खुरमा खाकर मनाइए ईद, अपनापन जताने की हमें है उम्मीद। ईद पर घर पे बनी मीठी सेवैया, हम ही हैं खुद अपने लाइफ के खेवैया। सेवैया में मिलाइए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, त्योहारों में छिपे हैं अपने पन के रूट्स। केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा, केसर से पाया इस रेसिपी ने रंग सुनहरा। खिलाकर शीर खुरमा दोस्ती को कीजिए गहरा। खाना खिलाकर जब गहरी होगी दोस्ती, तब कभी कभी होगी हल्की फुल्की मस्ती। अपनापन दिखाने का त्योहार वाला टाइम। सब्सक्राइब कीजिए आचार्य 90 एफएम, वंस इन अ लाइफ टाइम। भाई, त्योहारों को मनाना और लजीज खाना खाकर अपनापन जताना, ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। और यही अपनापन जताने के लिए आपको स्वाद का जायका से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे आचार्य 90 एफएम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारे महाराष्ट्र

कोंकण और तटीय क्षेत्रों में श्रावण मास की पूर्णिमा को नारली पूर्णिमा मीन्स नारियल पूर्णिमा इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन मछुआरा समुदाय समुद्र देवता की पूजा करके उन्हें नारियल अर्पित करता है और मॉनसून के बाद सुरक्षित तरीके से मछली पकड़ने के लिए नए सत्र की शुरुआत करता है। समुद्र देवता को शांत रहने और आपदाओं से रक्षा करने की प्रार्थना इस दौरान की जाती है। रक्षाबंधन के साथ ही मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के प्रेम को भी दर्शाता है। इस दौरान पारंपरिक गीत नृत्य और पकवानों का आनंद लिया जाता है। इन पकवानों में विशेषकर नारियल वाले चावल को बनाया और खिलाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बनने वाला ये नारळी भात मीन्स नारियल वाले मीठे चावल ताजा नारियल गुड़ चीनी और सुगंधित मसालों से बनता है। इसे बनाना बेहद सरल और आसान है। भाई जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ नारियल पूर्णिमा के दिन ही बनाएं। किसी और जश्न के दौरान भी आप इस ट्रेडिशनल नारियल के चावल की यमी रेसिपी को जरूर बना सकते हैं। ये रेसिपी खास तौर पर अपनी बनावट और स्वाद के लिए जानी जाती है। तो भाई शुभ काम में देरी क्यों? हमारे आज के इस त्योहार स्पेशल एपिसोड में हम नारियल के चावल मीन्स नारळी भात को बना ही देते हैं। नारळी भात बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: बासमती चावल एक कटोरी, ताजा नारियल एक, नमक आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार, ब्राउन गुड़ पौना कटोरी, केसर के धागे 10-12, लौंग 9 या 10, देसी घी 4 बड़े चम्मच, पानी 2 कटोरी, मिक्स ड्राई फ्रूट्स 1/2 कटोरी। मिक्स ड्राई फ्रूट्स मीन्स काजू बादाम किशमिश चिरौंजी मीन्स चारोड़ी वगैरह। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स के बदले मिल्क मसाला को इस्तेमाल मत कीजिए, अदरवाइज इस नारळी भात का लुक्स थोड़ा सा बदल जाएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें ताजा नारियल को कद्दूकस कर लेना है। हमें लगभग 1/2 कटोरी भर के ये नारियल चाहिए। फिर चावल को अच्छे से धो लेना है। चावल को पानी से धोने के बाद उसका पानी हमें हटाना है। उसके बाद लगभग 45 मिनट के लिए इसे अलग से रख दीजिए। इस तरह से भिगोकर रखे हुए चावल पकने के बाद बड़े और खिले खिले से दिखते हैं और इस वजह से हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हम नारळी भात बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब हमें ब्राउन गुड़ को भी कद्दूकस कर लेना है। फिर एक पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उस देसी घी को हमें लो फ्लेम पर गरम करना है। अब हम उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। फिर इन ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उसमें धीमी आंच पर हम गरम करेंगे 3 बड़े चम्मच देसी घी। जब वो घी गरम हो जाए तब हम उसमें लौंग डालेंगे। इसे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें भूनना है। जब लौंग फूल जाएगी तब उसमें से खुशबू आने लगेगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे भिगो कर रखे हुए बासमती चावल और थोड़ा सा नमक भी। इसे एक बड़े चम्मच की मदद से हमें मिक्स करना है। उसके बाद उन चावलों में हम डालेंगे गुनगुना पानी और केसर के धागे। फिर हम गैस की फ्लेम को तेज करेंगे। जैसे ही चावल में तेज उबाल आएगा तब हम गैस की फ्लेम को धीमा करेंगे। थोड़ी देर के लिए उन चावलों के ऊपर हम ढक्कन रखकर इसे पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद चावल सारा पानी सोखकर पूरी तरह से पक जाएंगे। इस बीच एक छोटे पैन में गुड़ और नारियल डालकर उसे मिक्स कीजिए। हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। थोड़ी देर बाद गुड़ पिघलना शुरू होगा। आहा, क्या बात! नारियल और गुड़ के पकने की खुशबू से सारा घर महक उठेगा और घर के लोगों के टेस्ट बर्ड्स अब एक्टिव मोड की तरफ प्रस्थान करने लगेंगे। मींस सबको उत्सुकता होगी कि भाई हो क्या रहा है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भाई, पके हुए गुड़ और नारियल के इस मिश्रण को हम चावल में मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे नहीं। एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसे मिक्स करने के लिए काटा चम्मच को यूज कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएंगे। जनाब जरा रुकिए, तो मेरी बात को सुनिए। तो इतनी भी क्या बेकरारी भाई, अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। अब हम लेंगे एक सुंदर सी प्लेट। उस प्लेट में हम डालेंगे तैयार नारियल का मीठा चावल। इसे सजाने के लिए उसके ऊपर हम भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को फैला देंगे। हमारे महाराष्ट्र का नारियल चावल मींस नारळी भात त्योहारों के व्यंजन के रूप में अब हो गया है तैयार। और इसे टेस्ट करने हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई, देर किस बात की, आप नीचे जमीन पर बैठ जाइए। अपने साफ और धुले हाथों से इस गर्मा गर्म नारियल वाले चावल का एक निवाला उठाइए। अपनी उंगलियों से उस चावल के टेम्परेचर और टेक्सचर को फील कीजिए। फिर एकदम नजाकत से, एकदम आराम से उस निवाले को अपने मुंह में डालिए। उस चावल का अरोमा और उसका टेस्ट आपके चेहरे पर मिलियन डॉलर वाली स्माइल को जरूर लाएगा। यकीन ना आए तो इस नारळी भात को आप एक बार बनाकर तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे बनाकर और

दोनों के साथ मिल बांटकर खाने से आप एकदम खुश हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस नारळी भात की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है नारियल वाले मीठे चावल। रक्षाबंधन के त्योहार पर मिठाई में डाला नारियल, त्योहार को जरूर मनाएंगे शैतान भाई और बहन अड़ियल। आया पूर्णिमा का पर्व ये पावन, खुशियों को मनाने बनाया हमने मीठा नारियल चावल। नारियल का साथ देने हमने डाला गुड़, इसकी मिठास ऐसी कि सुधार देगा आपका मूड। स्वाद का जायका ऐड करने डाली हमने लौंग। आचार्य 90 FM पर आप जरूर सुनिए सॉन्ग। मीठा नारियल चावल मींस स्वाद के संग सेहत। सिर्फ हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। सावन का महीना लेकर आया खुशियों की आहट, स्वाद का जायका शो मतलब लजीज खाने की चाहत। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने बनाई एक खास रेसिपी, शीर खुरमा नाम की। इस रेसिपी में बारीक सेवई, दूध, खजूर और मिठास भरी शक्कर को देसी घी के साथ मिलाकर हमने ईद को सेलिब्रेट किया। किया कि नहीं ऑडियंस जी? जी बिल्कुल किया। इस प्यारी सी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर हमने थोड़ी सी सजावट भी की। उसके बाद हमने नारियल पूर्णिमा का पावन पर्व भी शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। ताजा नारियल, बासमती चावल, गुड़ और लौंग को घी का तड़का लगाकर हमने एक खास महाराष्ट्रीयन रेसिपी बनाई। नारळी भात नाम से फेमस रेसिपी को रक्षाबंधन स्पेशल सेलिब्रेशन के तौर पर हमने आचार्य 90 FM के हमारे खास ऑडियंस के लिए बनाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का। ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: not just about absence of any disease, it is also about complete state of well-being, जहाँ पे हमारा psychological health, हमारा physical health सब काम पे आता है. तो mental health, again most of the time when we talk about mental health, लोग जो है उसे confuse करते हैं mental illness के साथ. So not everyone is mentally ill, but everyone has a mental health that they need to take care of, just like they take care of their physical health. It's about their emotions, their feelings, their personality. So yeah, that's about it.
1: So आजकल हम देख रहे हैं कि specifically अगर बात किया जाए young adults के बारे में, what would be your advice on mental health? How they can prevent themselves from the suicidal thoughts and everything?
0: How they can prevent themselves from suicidal thoughts? Okay. I think again हमें basic से start करना पड़ेगा कि what do we mean by suicidal thoughts? उसकी roots क्या है? And क्या हम इसे prevent कर सकते हैं? Would be the first question. Then how can we prevent it? So first let's understand what do we mean by suicidal thoughts. जब एक व्यक्ति को व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, भले वो बच्चा हो, टीनेजर हो या ओल्डर कोई हो, जब उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर, देयर इज नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू, और काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो इस पेन को ख़त्म करने का जो एकमात्र तरीका है, इट इज़ टू एंड दिस लाइफ. तो अगर ये लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसा कोई पेन भी नहीं होगा. दिस इज़ हाउ, दिस इज़ वॉट सुसाइड. And then how they can prevent it is there are different like methods to do that. But जब हम suicide prevention के बारे में बात करते हैं, I just want to take a moment and highlight कि जो suicide prevention का responsibility है, ये अकेले एक बच्चे के ऊपर या अकेले एक individual के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो usually आता है. क्योंकि हम suicide prevention के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि it is up to that individual or their therapist. But I feel that prevention is a collective responsibility. And when I say collective responsibility, I mean ki everyone has a role. A teacher has a role, a parent has a role, classmates or peer has a role. Larger scale mein dekhe to school as an institution ya office as an institution has a role. Media has a role ki wo kaise डिपेक्ट कर रही है, कैसे प्रेजेंट कर रही है सुसाइडल केसेस, क्या उसको वो सेंसेशन बना रही है या सेंसिटिवली हैंडल कर रही है. देन अ वेरी बिग रोल ऑफ पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, स्टेट, डू दे हैव दैट इनफ रिसोर्सेज जहाँ पे प्रिवेंशन के लिए, मतलब वो कंडीशन है जहाँ पे वो लास्ट स्टेज पर पहुँचेगी ना, तो प्रिवेंशन के लिए अकेले एक बच्चे पे वो नहीं आना चाहिए कि हाउ दे शुड डू इट. इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट. Collective responsibility.
1: So, Ismit, I wanted to ask, okay, what do you think, what is the very general problem that every teenager goes through, which might lead to take this big step in their life? It can be anything. But what do you think, with your experience, is the general problem of
0: asking about just general problems? Again, a disclaimer that whatever I will share here right now is based on my readings, my personal experience and my discussion with teenagers. So whatever I will share, वो ज़रूरी नहीं कि सबको equally वैसा apply हो, सबके cases अलग अलग हो सकते हैं, but जो recurrent चीज़ें हैं, I might even miss out on few, but जो data भी हमें बार बार बताती है, that is A would be loneliness. A lot of teenagers, a lot of young adults today feel lonely despite having a lot of people around them. And it's not like they are not trying to do anything to feel less lonely. But 2023 mein WHO ne to declare kar diya tha ki it's a public threat. Loneliness is a public threat. But aisa nahi hai ki nahi try kar rahi hai. Uska jo contradiction, आयरनी देखते हैं तो यही जनरेशन है जो एक्सट्रीमली ट्राई कर रही है टू फील लेस लोनली. देयर इज प्रेशर टू एंजॉय, देयर इज प्रेशर टू हैव फन, प्रेशर टू मेक कनेक्शंस. इट्स द सेम थिंग लाइक इफ वी वांट टू टेक एन एग्जांपल, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ डेटिंग एप्स. अ लॉट ऑफ यंग एडल्ट्स, अ लॉट ऑफ टीनएजर्स, अ लॉट ऑफ कॉलेज going students are using dating apps and I am in no position to say कि वो use करना गलत है या नहीं है. It's a personal choice. It is helping people find connections. Then why not? But then there's something called as dating burnout जो लोग feel कर रहे हैं, which is very similar to workplace burnout. और workplace burnout में भी वही emotional exhaustion होता है सब कुछ. Like everything is same. It's just that the difference is यहाँ पे हम जो swipe करते हैं dating app में, the job here is to find connection. So there's a lot of exhaustion that these people generation feel to make a meaningful connection. So there's a lot of sense of loneliness, and then apart from this, there's also constant conflict in relationships. And when I say relationship, it is beyond two partners who are dating. It goes to the families as well. A lot of the time, a teenager simply feels ki why are they not listening to me? Yeah, why is it so difficult for them to understand what I'm telling them? On the other hand, parents are like, we are trying to protect our children, and whatever we are saying is because of their own betterment. So there's a lot of conflict, there's a lot of communication gap, and this communication gap is also, there's also emotional gap ki hum nahi samajh pa rahe ki what the other person is feeling. So that is B. I think I pointed out loneliness and then family conflict, and there's also external pressure like societal pressure about performance, about marks. रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाता है अबाउट द केसेस, बट इट इज़ ओनली जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. अगर हम डेटा की बात करें तो ओनली 1 समथिंग पीपल आर ओनली लाइक. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, देर इज नॉट वन पर्टिकुलर कॉज टू सुसाइड. अगर अगेन मीडिया में भी रिप्रेजेंट करते टाइम काफ़ी लोग ना नैरो डाउन कर देते हैं. अगर आपको रिसेंट याद रहेगा न्यूज़ में जो आया था अबाउट वन फैमिली, अ टीनेजर जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड देन उसमें उसको सेंसेशन बना दिया गया था जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ उसको कनेक्ट कर दिया गया. बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्टिकुलर रीज़न, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सो मेनी अदर स्ट्रेसेस दैट अ पर्सन इज फेसिंग.
2: सो मैम, आई डू हैव अ क्वेश्चन अबाउट लाइक आपने बोले करके फैमिली के बॉन्ड की वजह से भी जो पर्सन है वो सफ़र करता है. सो आई डू वांट टू नो करके अगर फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, ऑन अ पर्सनल नोट आई थिंक आइदर द पर्सन चूज अनदर कैरेक्टर टू लिव, लाइक वो उन्हें हाई पे भी लेके जा सकता है. एंड ऑन अ नेगेटिव नोट वो पर्सन एक्सट्रीम डिप्रेशन में जा सकता है. आई डू वांट टू नो योर थॉट्स ऑन इट. लाइक मैम, अगर एक बच्चे का अपने डैड के साथ में अच्छा बॉन्ड नहीं है, तो वो पर्सपेक्टिव से वो बच्चा आइदर एक अनदर पर्सनालिटी चूज करके एक हाई पे जा सकता है. अनदर पर्सनालिटी मैम लाइक गिव ऑन द इमोशन, लाइक इमोशंस को पीछे छोड़ के. तो ये इफेक्ट करता है क्या मेंटल हेल्थ को? बच्चा अगर अपने मॉम डैड से थोड़ा दूर रह रहा है तो लाइक वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी कम हो रहा है उसके पास. सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिप्लेस द थिंग्स विद सम अदर. स्पोर्ट्स हो गया, लाइक उनके उसकी पर्सनल लाइफ हो गई. सो डज इट हेल्प?
0: इंडिविजुअल का अलग अलग होता है. नाउ इन दिस सिचुएशन कहीं पे सपोज अगर हम बात करें कि फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अगर फैमिली इन जनरल टॉक्सिक है कि वहाँ पर रह के हमारा एनर्जी और ड्रेन हो रहा है, हम खुद से और एक्सप्लोर चीज़ें नहीं कर पा रहे, खुद को और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देन फॉर समवन इफ दे आर दे हैव गुड कोपिंग मैकेनिज्म लाइक इफ दे आर एज यू सेड कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, किसी आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट डज हेल्प.
3: Suddenly,
0: कैसे हम वो पैटर्न को समझें एंड व्हाट वी कैन डू फॉर देम
3: ओके
0: एंड हाउ विल वी यू नो कंफर्ट देम और यू नो मेक देम.
3: थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन मैम. कमिंग फ्रॉम अ टीचर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कलेक्टिव एफर्ट है, सबका रोल है, सम वेरी ग्लैड दैट दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम अ टीचर्स पर्सपेक्टिव. कि अगर स्टूडेंट या इररिस्पेक्टिव लाइक द रिलेशनशिप कोई हमसे छोटा किसी डिस्ट्रेस में है, तो पहले हम वो साइंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें. आपने करेक्टली कहा कि जैसे अगर बच्चा, तो हमें थोड़ा नोटिस करना है कि सडन चेंज क्या आ रहा है पर्सनैलिटी में. अगर आउट गोइंग बच्चा सडनली शांत हो जा रहा है, वो क्लियर कट साइन है. बट देन इसके अलावा भी कुछ साइंस है जो हम मिस कर देते हैं, जैसे कि अगर बच्चा हमें पता है कि किसी डिस्ट्रेस से गुजर रहा था, उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन सडनली अब काम हो गया है, एकदम ही शांत हो गया, या फिर एकदम ही पॉजिटिव वे में सब चीज़ें ले रहा है, तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि नाउ थिंग्स आर बेटर. बट एक्चुअली थिंग्स आर द थिंग इज मेंटली उसने गिव अप कर दिया, मेंटली उसने एक डिसीजन बना लिया है कि अब तो टेंशन लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब रोके भी कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू. नाउ व्हाट एज अ टीचर वी कैन डू टू प्रिवेंट दिस इज, फर्स्ट जब आप चेंजेस ये सब देख रहे हैं, एक्नॉलेज दैम, सिट विद दैट चाइल्ड एंड बी वर्बल अबाउट व्हाट यू सॉ और व्हाट यू नोटिस, एंड विदाउट बीटिंग अराउंड द बुशेस डायरेक्टली आस्क, आर यू थिंकिंग अबाउट किलिंग योरसेल्फ, आर यू थिंकिंग अबाउट सुसाइड. नाउ ये बोलने में बहुत डिसकम्फर्टिंग लगता है कि ये डायरेक्टली कैसे बोले, मतलब इससे तो फिर हो जाएगा कि हम आइडियाज दे रहे हैं. लेकिन अगर आपने देखा कि कहीं कहीं साइंस है, बच्चा बोल रहा है कि देर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग, या मेरा बस हो गया है, या देख रहे हो आपके बच्चा कहीं, पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं, तो बच्चा सडनली अपने पासवर्ड सब लिख रहा है, या सडनली रैंडमली किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट साइंस टू पिक अप एंड देन डायरेक्टली आस्क कि इज देर एनीथिंग यू वांट टू टेल मी एंड आई एम हियर टू लिसन टू यू. और डायरेक्टली वो टॉपिक निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके अलावा एज ए मतलब टीचर ने उनको पूछा है, शायद उसके अलावा पहले किसी ने नोटिस नहीं किया हो, पहले कभी किसी ने ये शायद ये थॉट के बारे में उन्होंने भी खुद से कभी बोला ना हो, तो वो जब आप सामने से डायरेक्टली पूछेंगे तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए. आई टोल्ड यू कि पिक अप ऑन दैट एंड सो किसी को अगर कंटिन्यू करें हम, तो एक गेट कीपर ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को कि सुसाइड प्रिवेंट कैसे करें, क्या नेक्स्ट स्टेप करें. तो एक मॉडल होता है विच इज़ कॉल्ड एज क्यू पी आर मॉडल. तो क्यू में यू आस्क क्वेश्चन एंड देन यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली पूछो. देन पी में इट इज़ नॉट लाइक कि आपको सडनली उसको परसुएड करना है कि डोंट डू इट. सडनली वो होगा भी नहीं और वो शायद उस स्टेट पे है भी नहीं कि सारी लॉजिकल रीजनिंग वो एक्सेप्ट कर पाए. तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप डिले करें जितना उनके मतलब असेस करें क्वेश्चनिंग के टाइम पर कि रिस्क कितना है. अभी असेस कैसे करेंगे, चेक करना कि सिर्फ आइडिया है या प्लान भी है, सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल प्लान भी है. अगर उन्होंने प्लान भी करके रखा है कि आसपास ये है तो आई कैन डू दिस या आई कैन जंप फ्रॉम दैट, सो इट्स द रिस्क इज मच हायर एट दैट टाइम. तो वो रिस्क असेसमेंट करने के बाद पर्सुएशन पे यू जस्ट हैव टू सिट देयर विद देम, पर्सुएड देम दैट दिस इज नॉट द टाइम टू मेक टेक एनी एक्शन एंड आई एम हियर विद यू. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग देम सोल्यूशन, जस्ट टेल देम दैट दे आर हियर विद यू. तो वो लोनलीनेस का जो मैंने कहा था वो भी थोड़े उन्हें फील होगा कि येस समवन इज देयर एंड दे डू नॉट हैव टू कैरी दिस मच पेन ऑन देयर ओन, समवन इज देयर फॉर देम टू शेयर इट विद. बोलो कि हम साथ में ये चीज़ हैंडल करेंगे एंड देन आर इज टू रेफर इट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, इमरजेंसी केयर सेंटर्स. अगर ये सब इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो आप उनके साथ बैठो और बोलो कि लेट्स टुगेदर कॉल देम एंड लेट्स टॉक टू देम. तो टेलीमेनेस एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कॉल इसका आई कॉल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप हेल्पलाइन नंबर उसे दो, देन उनको इमीडिएटली छोड़ कर ये सब देख के चले ना जाए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट किया है, लग रहा है हायर है तो बी अराउंड देम एंड सी कि आसपास उन्होंने कोई भी ऐसे लीथल मटेरियल नहीं है, कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सेल्फ हार्म हो सके, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा एरिया जहाँ से वो जंप कर सके. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू स्टे अराउंड देम इवन इफ दे पुश यू कि नहीं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू सी यू, तभी भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टे विद दैट पर्सन.
1: But as an adult who is a grown person and not only grown person but whoever it is listening.

0: Welcome back, and we were talking about suicide prevention, and we have a guest with us, Ms. Smita Mishra, and we will continue the topic.
1: As a mental health professional, I have heard that there are so many myths and so many stereotypes around someone who's struggling through mental health or someone who has reached to a point where they are getting suicidal ideation. And the common myth that I have seen or heard about is that if you talk about suicide, it can make things more worse.
2: Mm-hmm.
1: So I want to ask that, is that true?
2: No. A single word answer, no. Talking about it helps us open the channel for conversation. The problem is not talking about it.
1: Mm-hmm.
2: And that exactly what leads to myth and stigma around mental health. Because we don't talk about it. कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, अगर चेस्ट में कोई बर्निंग सेंसेशन है, तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर एक्सरे वगैरह करा लेते, सब टेस्ट कराते, सब नॉर्मल भी आता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इट वॉज जस्ट एन एसिडिटी. बट हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं जस्ट टू गेट चेक्ड. हम वो हेल्प लेने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. बट वेन इट कम्स टू टेकिंग हेल्प फॉर योर मेंटल हेल्थ, हम डिले कर देते हैं. और वो डिले की वजह से बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि दैट सुसाइडल आइडिएशन इज नाउ हैज रीच टू द पॉइंट जहाँ पे अ पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एंडिंग देयर लाइफ.
1: दैट इज कम्प्लीटली ट्रू, दैट इज करेक्ट. कैन यू टेल मी सर्टन myths or stereotypes that you think that are very common among everyone regarding suicide?
2: Yeah, myths like talking about it will give out the impression that you are weak or you're not strong enough, or talking about it is not normal. So yehi jo not normal wala phenomena hai, लोगों को कंफर्टेबल इसलिए भी नहीं फील होता है बात करने में, नॉट जस्ट बिकॉज कि आसपास लोग नहीं है ट्रस्ट करने वाले. हो सकता है कि ट्रस्टफुल लोग हैं, हो सकता है फैमिली सपोर्टिव है, टीचर सपोर्टिव है, बट उन्हें वो बोलना नहीं आ रहा है क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं है. वो कोई मॉडल करने वाला कभी कोई एडल्ट था नहीं. सो वाई मोस्ट ऑफ द यंगर पीपल आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक अबाउट इट इज ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू टॉक. They have never experienced a grown-up be vulnerable. या उन्होंने नहीं देखा है लोगों को express करते हुए उनकी weaknesses या अपने emotions के बारे में बात करते हुए उन्होंने नहीं देखा. तो when a child is growing up या थोड़े वो teenage या adult इसमें पहुँचते हैं तो वो धीरे धीरे accept करने लगते हैं कि I think यही reality है. मुझे अगर mature रहना है then I need to be tough या I should not share it with anyone and I should deal with it on my own. And there are again we as I said ki media also has a role in it. So there's a lot of content on Instagram that sort of glorifies this whole thing of doing it all alone. And I'm not against of doing things alone, but it is normalized in such a way, it is glorified or romanticized in such a way that it is limiting people to take help. Why in India people who have never read, who were never interested in reading, why are they interested in reading self-help books? It is because the idea of helping themselves, yeah, taking care of their mental health is only up to them, their own responsibility. Baki logon ko us pe involve karne ka koi zarurat hai nahi. Ye all these things are sort of limiting them in asking for help. Yeah, asking for help would be a secondary. Simply talking about it is difficult. It's because unhe nahi dekha hai ki koi bada uske bare mein baat kar raha hoga.
3: I would give an opinion about this, कि हम generational gap होते हैं. When you talk about parents and when you talk about children, there is a lot of generational gap and understanding gap. जहाँ पे if we see आजकल के generation में mental health is very much important. And older generation को आप देखोगे जब, तो वहाँ पे I think physical health was much more important and awareness नहीं थी,
2: right?
0: आज की जनरेशन में वो अवेयरनेस है. अगेन मीडिया कम्स इन द प्ले
2: वेयर इट हैज हेल्प्ड इन अ पॉजिटिव वे.
0: एंड थ्रू द मीडिया हम बता रहे कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एब्सोल्युटली.
0: एंड छोटी से छोटी बातें रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है.
2: एंड राइटली रिपोर्ट करना, सेंसिटिवली रिपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट
0: है. सो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो छोटे से छोटी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी कुछ शेयर ही नहीं किया, बट दे आर इन टू वेरी मेजर, आई वॉन्ट नॉट यूज वर्ड डिप्रेशन, बट उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई होती है, वो शेयर नहीं कर पाते. दे बिहेव वेरी नॉर्मल. एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं कि छोटी से छोटी बातें होती है तो दे आर एक्सप्रेसिव. So their nature is
2: different. Yeah. Yes, हर स्टूडेंट का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का. कई लोग कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए कर पाते हैं, कई लोग कंफर्टेबल होके भी उन्हें शायद नहीं वोकैबुलरी मिल रही है कि कैसे कर पाए. और मैम आपने एक नाम चीज़ बोली कि कई बार बच्चे जो है डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं बट कभी वो दिखाते नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिकॉज इट्स अ वेरी रियल थिंग. कई बार अगर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके घर पे किसी ने सुसाइड किया होता है तो लोग बोलते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान अपनी जान दे सकते हैं. तो बाकी सारे जो चेंजेस हैं बिहेवियर में, इमोशन में जो दिख रहे हैं, ठीक है हम वहाँ से हेल्प कर सकते हैं, बट काफ़ी बार साइंस ऐसे हो जाए जो नहीं दिखाई देते, या जो काफ़ी नॉर्मल हो गई है कि हमेशा हंसते रहना, एक दूसरे की हेल्प करते रहना, तो लोग जो है यहाँ पर फिर बात नहीं करते, उनको लगता है सब ठीक है. तो अगेन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर सब ठीक है तो भी टाइमली चेकिंग करना और कम्युनिकेट करना, चैनल देना फॉर ओपन कम्युनिकेशन कि अगर कुछ है तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेड ऑफ सिंपली अज्यूमिंग कि ये इंसान तो सब अच्छे से कर रहे हैं, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एवरी थिंग इज़ ओके. लेट्स नॉट अज्यूम दैट.
3: आई वुड लाइक टू आस्क based on social media, where people have lot of मैं ये बोल सकती हूँ कि एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट्स को हरास कर रहा है. देर विल बी हरासमेंट, देर विल बी अ डिप्रेसिंग थॉट्स वेयर स्टूडेंट इज शेयरिंग दोज काइंड ऑफ अ थॉट्स. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स, एनी वन. तो वो पैटर्न ऑब्जर्व करना इज दैट ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
2: वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. सो यहाँ पे दो टॉपिक है, पहला एक हरासमेंट का है एंड दूसरा साइंस जो हमें सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है रिलेटेड टू सुसाइड. हरासमेंट इज अ वेरी इज अ थिंग दैट वी नीड टू रिपोर्ट. अगर हमें पता चल रहा है कि किसी बच्चे का पिक्चर किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया हो, या उन्हें कोई ऐसा कॉन्टेंट शेयर किया हो गया हो विच इज़ एक्सप्लिसिट या that made a person feel unsafe, that is very, then it is very important that we report that case and cyber security ka wahan pe help le. Second, about someone posting things which is very closely related to feeling of hopelessness, ya koi aisi poetry likhna jahan pe thoda sa sadness jo hai wo chalak raha hai, ya sad status lagana, to kai baar log bolte ki ye to har mahine ka hai, iska ye attention seeking activity hai, ye karte hain. To I just want to say ki pick up that sign, even though if it's an attention seeking activity, they are telling you that they need attention, it is very important that you do not ignore them. And what ho sakta hai ki unki artistic personality hi ho ki wo sad sab kuch post kare, phir bhi unse baat karo, timely check up karo, shayad wo dismiss kare is cheez ko, theek hai shayad nahi hai wo cheez, but it is very important to ask because it's better to be safe than sorry, right? What if everything was right in front of them and हमने assume कर लिया कि it's just her personality or that's how the artist mind work. ये सब चीज़ें सोच के हमें रुकना नहीं है. अगर हमें लग भी रहा है कि वो attention seeking activity है, then it's a clear big sign. Give them attention. Talk to them.
4: Ma'am, do you think like social media, reach out to you first? Whatever like आपका जो भी thoughts है या फिर feelings आपके जो चल रहे हैं ना, सिर्फ thoughts. सबसे पहले जो आपके पास रीच आउट करता है वो है सोशल मीडिया, बिकॉज जो भी आपका फीड रहता है एंड वो टोटली वर्क करता है आपके मेंटल स्टेट के ऊपर. Like if you are dreaming about something and the next moment you open the social media, you see them. Like,
2: okay, now about algorithm, आप मीडिया के स्टूडेंट हो, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो यहाँ पे, तो फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डू यू थिंक अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहाँ पे कोड जो है पढ़ रहा है हमारे ड्रीम्स?
4: या आई डू थिंक
2: आई है,
3: आई थिंक मोर ओवर पढ़ने से ज़्यादा व्हाट एवर वी आर टॉकिंग और व्हाट एवर वी आर सर्चिंग,
1: एग्जैक्टली,
2: यस एब्सोल्युटली, दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड दैट्स हाउ योर एल्गोरिदम पिक्स इट अप एंड देन कॉन्स्टेंटली आपको उसी चीज पे कॉन्टेंट बार बार दिखाया जाएगा, और जब कॉन्स्टेंटली उसी चीज को एक्सपोजर आ रहा है तो अनकॉन्शियसली जब आप फिर आप सोओगे तो आपको वो ड्रीम में भी आएगा, तो इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टेंटली आपका फोन भी आपको रिमाइंडर दे रहा है कितनी सारी चीज के, एंड सुसाइड प्रिवेंशन के अराउंड जितना कॉन्टेंट है ऑनलाइन उतना ही इट इज शॉकिंग एंड बट इट इज सो रियल कि सुसाइड के अराउंड भी ऐसा कंटेंट है जो प्रमोट कर रहा है सुसाइड. मतलब आई रिमेंबर सीइंग अ पोस्ट दैट टॉक्स अबाउट कि पीपल हैव सो मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट यू बट फॉर दैट यू नीड टू एंड योर लाइफ.
4: Yeah, that's my point. Like, social media presents both positive and negative perspective.
2: Yeah, the extremes are there, yes. Right? So, like, अगर आप social media handle कर रहे हो या manage कर रहे हो, media को represent कर रहे हो, तो it is very important that you be sensitive and responsible while you are representing it. Now, media जैसे काफी help किया है media ने to give a platform जहाँ पे लोग openly discuss कर पा रहे हैं या educational content around mental health consume कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे psychologist है, psychiatrist है जो content बना रहे हैं actively, but on the other hand उस same algorithm में, उस same media में हमारे पास extreme content है जहाँ पे जो, क्योंकि अब psychological words काफ़ी available है. अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने नॉर्मली डिप्रेशन अ वर्ड यूज़ नहीं किया, आपने थोड़ा हेजिटेट किया वहाँ पे. So we need such like responsible citizen if you are on media, because if my students are like listening to me, they know ki maine kitni baar unko bola hai do not casually use these words, their real mental health condition, do not use it in your bio that I'm a psychotic person, yeah, like do not make fun of these stuff,
3: yes.
2: Do not make it cool ki kids of autistic something something bio mein likha hoga. So ट्रीट मेंटल हेल्थ कंडीशन एज अ कंडीशन, हम किसी दूसरे फिजिकल कंडीशन को इस तरह से बायो में लिख के मजाक नहीं उड़ाते. तो दिस वर्ड्स का यूज करना इज नॉट हेल्पिंग अस इन एनी वे, इट इज सॉर्ट ऑफ डिसमिसिंग द एक्चुअल वैल्यू और सॉर्ट ऑफ मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पर्सन इज एक्चुअली गोइंग थ्रू इट टॉक अबाउट इट ओपनली, बिकॉज उनको लग रहा है कि ये तो मजाक की तरह लिया जा रहा है. So there are two extremes that we need to keep in mind, and as a professional media representative we need to be mindful of how we are presenting the content.
4: Like ma'am, jab hum media ke around revolve kar rahe hain, so do you also think ke jo PR works hote hain, like Instagram pe comment sections hote hain, that also like affect the audience? The person, कोई एक particular person को वो चीज़ affect करती है, like comments. कमेंट्स हो गए और रिस्पॉन्स हो गए,
2: राइट राइट. एक रील रील पे किसी ने अगर समझो खुद का ही कोई फोटो पोस्ट किया हो, लेकिन इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर देम, बट देन समवन विल कॉल इट क्रिंज. कोई बोलेगा कि ये कैसा दिखावा कर रहे हैं या दिस इज सो क्रिंज. सो या पीपल आर आउट देयर टू मेक कमेंट्स जहाँ पे दे विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर यू नो मैटर वॉट यू पोस्ट, दे विल criticize you. So yeah, that also that impacts a lot. उसका भी काफी ज़्यादा फर्क पड़ता है.
3: Referring to this, I remember one of the interview kind of पीछा चढ़ा था, जहाँ पे वो interview के time पे एक question आता है उसके पास कि does it impact आपके comment section में जो ये negative comments आते हैं, does that impacts you? So she comment on that कि दिल्ली में बैठ के चिंटू मेरे बारे में क्या बोलता है, व्हाई डज इट इंपैक्ट मी. सो दैट इज अ पॉजिटिवली शी हैज
2: टेकन, अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन. रिचा चड्ढा मे बी हैड दैट रिसोर्सेज अराउंड देम और मीडिया पीपल अराउंड देम हु वर देयर टू एडुकेट देम कि ये पीआर टैक्टिक्स है या दे आर जस्ट रैंडम बुलीज. But not everyone is equipped with that kind of support around them. Maybe someone is sitting in some rural area, because now internet is everywhere, screen touch, like good quality mobile phone is everywhere. So they are simply presenting everything, and they do not know that these are simply chatbots who are doing things like only to bully someone. So they don't understand, and wahan pe unko again depends on person to person, and the kind of support that they have, their own coping mechanism, how they deal with situations like this.
1: With this related to one thing, I want to share one small experience. When we were doing, so Smita and me, we were in same degree college. We did our same bachelor's together in psychology, and we had this one professor. During our lectures, she was explaining something, and this particular one thing that she mentioned that time, which influenced me, and that I still use it. And I feel like if you are surrounded by such kind of people and you have such kind of awareness, it can help you to, you know, personally. And it was that she told me, never give a remote of your life to someone else to make you feel a certain way. And that I still use. That why will I let anyone else make me feel upset or happy or whatever I'm feeling right now? I have the control of myself right now. Whatever I'm feeling, whatever I'm saying, whatever I'm thinking, I have the control over my body, my thoughts and everything. I am not going to let anyone else make me or affect me about anything. Talking about this Instagram post, if someone is texting me, if I have that strong mindset, depends from

0: फील सो ग्रेटफुल दैट वी केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे हमारे आसपास लोग थे टू रिमाइंड अस कि सी दैट हेल्प इज अवेलेबल या यू कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. दैट्स अ प्रिविलेज दैट स्टिल इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. दैट द प्रिविलेज ऑफ हैविंग पीपल लाइक आर प्रोफेसर्स हु आर देयर टू टेल यू दैट हे आई एम हियर टू सपोर्ट यू. इंस्टेड लाइक अगेन मैंने जैसे कहा कि काफ़ी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्कूल को भी काम करना है, टीचर्स को भी आई फील की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि तुम कैसे हम कैसे एक माहौल क्रिएट कर पाए जहाँ पे बच्चा को ये ना फील हो क्लासरूम में आके कि मैं तो फेलियर ही हूँ. क्लास में जब रह के फेलियर फील हो रहा है, घर पर रह के फेलियर फील हो रहा है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ बच्चों के साथ हम एक्टिवली सच में सब जगह ट्रेनिंग कर ही रहे हैं और बच्चे एक्टिवली कंज्यूम कर ही रहे हैं कॉन्टेंट अराउंड मेंटल हेल्थ, बट वी नीड टू वर्क विद अडल्ट एज वेल, विद टीचर्स, विद पेरेंट्स. जहाँ पे वी ऑल्सो ट्रेन दें कि कैसे हम वो क्रिएट कर पाए सिचुएशन, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग भी इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी गो अहेड एंड गिव देम दैट. Now this will again motivate me to start posting online. थोड़े टाइम पहले ही मैं बात कर रही थी कि हो नहीं पाता है मुझे कैमरे के सामने पोस्ट नहीं कर पाती हूँ या टाइम नहीं मिलता है. बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम मीडिया को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया में राइट रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी फिर कौन करेगा. इट इज़ अप टू पीपल लाइक अस हु हैव राइट नॉलेज.
1: One last question. So, being a professional, what is something that you want to share out there, anything that it can be personal or anything, that everyone should know, that anything about suicide prevention?
2: And also, adding to that question, I would add ki parents is pe kaise kaam kar sakte, mainly because bachcha parents ke saath rehta hai, wo bond create karna bahut important hai. टीचर्स रहते हैं कुछ घंटों के लिए होते हैं, आई मीन दैट इज़ इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई फील माई पर्सनल ओपिनियन दैट पेरेंट्स शुड एक्चुअली बी एजुकेटेड अबाउट दैट मेंटल हेल्थ.
0: यस यस, पहले तो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी चीज़ें कि रियल प्रॉब्लम्स हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है जो बोलने में, विच इज़ ओके. वी नीड टू एक्सेप्ट इट कि आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है. एज अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को ये बोलो कि नो मैटर वॉट आई एम योर फॉर यू. फिर अगर बच्चा अगर आप ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर दे रहे हो बच्चे को, तो हो सकता है कि वो पर्सनल ज़्यादा चीज़ें या डे टू डे चीज़ें आके ना भी शेयर करे, लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पर बच्चा जेन्युइनली नीड्स हेल्प, उसको उस टाइम पर याद आएगा कि माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट नो मैटर वॉट आई एम देयर विथ यू. This constant reminder should be there. And सिर्फ बोलना important नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आके आपके साथ communicate करे, it is also important कि आप भी communicate करो. मैंने पहले modeling के बारे में बोला था कि बच्चे को express करना नहीं आ रहा है क्योंकि उसने कभी देखा नहीं है किसी बड़े को उसके बारे में बात करते हुए, तो आप भी आके अपने अगर आप अपने दिन के बारे में share करो. अगर ऐसा है कि कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है या कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं जो आप बोलने में थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है बच्चे के साथ, फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है पीरियड्स के बारे में बात करके. एज अ फादर और अ डॉटर या एज अ मदर और अ डॉटर फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ विस्परिंग मेक अ क्रिएट एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हो. इससे क्या होगा, अगर आप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बात करोगे ना, तो बच्चा विल पिक अप कि मेरे पेरेंट्स ने इतने डिस्कम्फर्ट के बाद भी, इतना हिचकिचाने के बाद भी ट्रस्ट किया और ये डिस्कशन उन्होंने किया मेरे साथ, तो मैं भी फिर एज अ चाइल्ड सीखूंगी कि मुझे भी कितना मुश्किल लग रहा है, बट आई कैन ट्रस्ट देम एंड आई कैन ट्राई. सो दैट इज़ वन. एंड सेकेंड फॉर लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि सुसाइड प्रिवेंशन के लिए एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मुझे क्या बोलना है, कि अगर मैं अभी बोलूँ कि यू आर नॉट अलोन, ये काफ़ी ज़्यादा आयरनी हो जाएगी बिकॉज यू जेन्युइनली आर फीलिंग अलोन. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो पेन, वो आपको कमज़ोर नहीं बना रहा है. दैट डज नॉट मीन कि आप कमज़ोर व्यक्ति हो क्योंकि आप वो फील कर रहे हो. नो, द रियलिटी इज़ कि आप

0: आसपास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो वो पेन के साथ कोप करने के लिए शायद इनफ रिसोर्सेज आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये एक ही तरीका आपको दिख रहा है, दैट इज़ टू एंड योर लाइफ। बट ट्रस्ट मी, रिसोर्सेज है, वी डोंट नीड टू आंसर एवरी थिंग ऑल टुगेदर, हमको सब चीज़ का आज ही आंसर नहीं चाहिए। ये एक पॉडकास्ट इज नॉट वन स्टॉप सोल्यूशन कि इसके बाद से सब ठीक हो जाएगा, नहीं। वी नीड जस्ट वन मोर नाइट, वन मोर डे, जहाँ पे वी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड दिस विल हेल्प अस लुक एट द रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल टू अस। सो द फर्स्ट थिंग इफ आई वुड वॉन्ट टू वॉन्ट माई ऑडियंस या एनी वन हु इज हैविंग सुसाइडल आइडिएशन इज जस्ट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड टॉक टू समवन, टॉक टू एनी वन यू फील कम्फर्टेबल विथ, योर क्लास टीचर, योर काउंसिलर, योर फ्रेंड या एनी ट्रस्टेड अडल्ट दैट यू हैव अराउंड यू। एंड इफ वो भी नहीं आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझ पाएगा, देन आई ऑल्सो मैंशन फ्यू हेल्पलाइन नंबर्स दैट यू कैन रीच आउट, जैसे टेलीमानस या आई कॉल, तो आप इन पर भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन पर इफ यू कैन मैंशन दीज नंबर्स दैट वुड बी रियली हेल्प।
1: So that was very insightful content and I think इस content से लेकर काफ़ी बच्चों को help होगी, काफ़ी adults लोगों को भी help होगी and also I would highlight कि parents को भी help होगी to understand their child and understand their mental health and बाकी जो भी सुन रहा है mental health कितना important है ये आपको पता चल जाएगा इस episode। तो यू आर लिसनिंग आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। हमारे साथ थे मिस इशिता मिश्रा, हमारे साथ थे मिस स्मिता मिश्रा एंड आचल सिंह। साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू सो मच।

0: फ्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,